हमारे सज्जन यार कहते प्यारे तेरे नाल बहुत प्यारा जी पुराना आदमी हो मेरा यार सब तो श्रोमणी प्यार करने वाले धन गुरु अर्जन देव पातशाह अकाल पुरख यार कहते लिखता है जब यार ने आन दीदार दिता इश्क का सिजदा कीता यार सामने आके खड़ो गया फिर होया की बुले ने कमाल कीता कहता है जब यार ने आन दीदार दिता गल दसनी नहीं जड़ी बीती दसन वाली जे कोई दसदा फिरदा है तो गलत है बाबा जी बचन कर दे कई ऐसे लोग मैं तुहानू रब मिला देना मैं रब हां नरमकार बाबा जी बचन कर दे सन झूठ बोल जिथे मैं उथे तो रब होता ही नहीं आखो मैं तो बिछोड़ा है क्यों भाई जे तू कहता है तो मैं नरमकार मिला देना मैं नरमकार अदूर कहते सो अजान कहे मैं जाना जरा कहता है मैं जानी मेरी बड़ी बिरती लगती कुछ नहीं वह तो अनजान उन्हें गुरमत न समझ आई नहीं सो अजान कहे मैं जाना जानन हार ना छाना किसे महात्मा ने बाबा गंग सिंह जी महाराज ने बेनती की बाबा जी मैं सुनिया तुहानू धन गुरु नानक पातशाह जी ने साक्षात दर्शन होते हैं बाबा जी कह लगे महापुरश हो जे हां कहने तो हमें आती है की पता होते ही होने आपस हां भी तो दुराई पाई जा मैं मेरी ने दिखती तेन सु मैं मेरी ने सुनाई तो दूर रात ते दिन का मेल नहीं है किसी तरह मैं ते तू दा मेल जब हम होते मैं भी फिरता है तो तू नहीं आए जब हम होते तब तू ना ही अब तू ही जिथे तू ना प्रकाश हो जाएगा उथे मैं ही बाबा जी ने फिर पीता की पता होते ही हो महाराज मैनू भी दर्शन कराओ बाबा जी सचखंड में लै गए सामने श्री गुरु साहब का प्रकाश की लोगों पुछो आ गुरु नानक मैनू नहीं दिसना बाबा जी कह लगे पढ़ाई तो बगैर कोई चीज नहीं मिलती आखो जितने तक पढ़ाई ना पढ़ी बच्चा जे पढ़ाई पढ़ेगा तो आलम बनेगा अखा ओ ही हैरानी पर हुण इलम बड़ा चंगा लग रहा है उसने मास्टर की संगत तो गुरमुख की पढ़ाई पढ़ के असी वो पढ़ते नहीं हाँ नितनेम करते नहीं बाणी नाल जुड़ते नहीं जी मेरू दर्शन बाबा जी ने प्रश्न किया साक्षात गुरु बैठे महापुरुष हो पर यह नहीं कहना दर्शन हो मैं तो तू दा मेल गल दसनी नहीं जड़ी बीती ए दर्शन ही ऐसे ए दर्शन दर्शन पेखत मैं जीरो दर्शन देख जीवा गुर तेरा अज उन्हों दर्शना शेष गंगा राम उड़ीकता फिर केड़े दर्शन प्यार नाल आखो धन श्री गुरु अमरनाथ तीजा गुरु कद समाएगा मेरी मन की इच्छा काफी समा हो गया रात दिन सात संगत दे भांडे जूठे बजी गए कितना समा हो गया छह महीने का पर कहरी सात संगत जे किसी वेले मन डोलदा है तो आसरा यही कहेगा

0: गुरु कार्य दो ही वस्तुआं सेवा ते सिमर सेवा नाल मन विच निम्रता आउंदी निम्रता वाले मन विच सिमरन टिक गंगा राम रात दिन भांडे मांजदा छे महीने अज नाले भांडे मांजी जांदा नाले अपने मन नू पिया समझांदे इधर आसा जी दी चार दे कीर्तन दा पहुंच पिया धन गुरु अमरदास पातशाह जी दीवान च उठे सीधे लंगर च ते गंगा राम दे कोल आके खड़ो हो गए गंगा राम की पिया कर रहे गंगा राम जो सिर चुके की तकिया इस मूरत दा ध्यान पिया करदा सा मूरत तो सूरत बन के धन गुरु अमरदास पातशाह सामने खड़ोते गंगा राम हाथ तो सुहा न लिबड़े हुए सन पर अपना सिर गुरु के चरण ते रो रो के चरण रुत हो गंगा राम की करता है पातशाह तेरे सिखा दे झूठे पांडे किन्ना चिर हो गया है छह महीने धन गुरु अमरदास पातशाह जी मुस्कुरा पाए गंगा राम तेरी सेवा सफल हो मंग की मत गुरु कर दी सेवा जो भी करता है वो सफल गुरु की सेवा
1: सफल
0: तन मन धन मन जो भी करता है जितनी भी करता है कोई गुरमुख माई पाई ओदा फल जरूर कर सेवा ते खा मेवा कर मजूरी ते खा चूरी गंगा रामा मंग तेरी सेवा गुरु नानक दे दर ते परवाह

घर पहुंचे अगे उसे तरह दरबान खड़ोता है, अंदर जान लगा दरबान ने क्या पीछे हट, तू कौन है कितो आए है? तेरे क्या मैं गोइंदवाल साहब तू गंगाराम नु मिल काम की है? तेने क्या मेरे को हुंडी है? शकरवाल वे के दरबान ने बड़ी नफरत की, किथे हुंडी दिखाई? दरबान कहन लगा पे ठहर जाए, पहले सेठ तू इजाज ले ले। गंगाराम बाहर खड़ोते, दरबान अंदर चला गया। अगे गंगाराम बड़े ठाठ गद्दे लगा के बैठा है, नौकर चाकर एक पासे मुरी भैया लेके बैठे। दरबार ने क्या सेठ जी एक आदमी आया उसे को डी है तो अनु मिलना चाहता है। गंगाराम ने क्या भेज दो, अंदर चला गया ब्राह्मण। आ भाई किस तरह है? गंगाराम मेरे को हुंडी केदी हुंडी है? धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने हुंडी भेजी। सोचन लगे, सिर नु खुरकन लगे, कहन लगा केड़ा अमरदास? आखो श्री वाहिगुरु, केड़ा अमरदास? ब्राह्मण ने कहा अमरदास नहीं, धन श्री गुरु अमरदास पातशाह। हाँ हाँ ओ बुढ़ा अमरदास, आखो श्री वाहे। ब्राह्मण नु बड़ा गुस्सा आ गया, गंगाराम आज गुरु नु बुढ़ा पिया कहिंदा, इसने तेरी पत रखी, आज ये की वचन कर रहे? गंगाराम फिर गुरु ने हुंडी भेज दी है। हाँ तो गंगाराम ने मुनीमा वाल इशारा किया, देखो भाई कोई गुरु अमरदास पातशाह जी का साडे नाल लैण देण है? वहीं ने मुनीमा ने सारिया वहीं फरोलियां शुरू कर दी, बड़िया बड़िया वहीं सन, फाइलां सन, फरोल के आखिरकार सिर फेरिया ते क्या सेठ अमरदास का कोई खाता नहीं? फिर वहीं कह दी जिसे अमरदास का खाता नहीं, आखो जिस फाइल के अंदर कारोबार च गुरु का खाता नहीं वो तो अधूरा कारोबार है। इंसान अधूरा है उसके कार्य भी अधूरे, गुरु पूरा है उसकी बख्शिश। फिर घर बैसो हरजन प्यारे सतगुरु तुमरे, बड़ी आकड़ नाल गंगे रखे। देखो जी कैसे लोग, ना कोई लैण है ना कोई देण, एवें उंडी भेज दिती। ब्राह्मण ने कहा गंगाराम गुरु नु भुल गए, माया का पर्दा तेरी मत ते आ गया, दात प्यारी विसरिया दातारा, मैं तेनु इना अखा नाल वेखिया के तू गुरु दे लंगर जूठे पाठे पाईदा, अज तू गुरु नु भुल गए। कहन लगा चलो ये तो ठीक है, पर गुरु का यह कम थोड़ा भी 500 की उंडी भेज दी, आज देती कर 1000 दी भेज देगा, हुण मैं माया जाया नहीं करनी, आखो श्री वाहे। पर इस मूर्ख नु पता नहीं सी माया तो वो जाया होती है जिहड़ी दूजे पासे लगी, जिहड़ी गुरु दे रेखे लग जाए वो माया तो सफल हो जाती है। जवाब दे ब्राह्मण वापस आ गए, हजूर दे के मथा टेकिया रोह पे। हजूर कहन लगे क्यों भाई ब्राह्मण देवता, मिल गए 500 रुपया? रो के कहन लगा पातशाह कोई नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? ब्राह्मण कहन लगा महाराज एवं इतनी दूर मैनु भेजे, वो तो कहना मेरा गुरु ना लैण देण भी कोई नहीं, कोई खाता नहीं। हजूर कहन लगे गंगाराम कहता है? हाँ महाराज। वो कहना मेरा गुरु ना कोई लैण दे। तो हजूर चौपड़ा मार के बैठे, चादर दी बुकर मार सज्जा हाथ कटिया दिल्ली वार कीता, मुठ बीट के जेब पा ली, ते कहन लगे लै भी ब्राह्मण देवता अगे तो गुरु नानक सी शाह ते गंगाराम सी गुमास्त, गुरु नानक दी सी जेब ते गंगाराम कटन वाला, गुरु नानक देंदा सी ओ लेंदा सी, पर जे आप पे कहदा मेरा गुरु नाल कोई लैण देण नहीं,
तो आज तू कोई ना आंखों से ही आया। कहन दी देरी से फिर कांटे पड़ने शुरू हो गए आंखों से ही। बटन हेठा करेंगे तो लाइट हो जाए बिजली, ऊपर कर दो बल्ब भी लगे है, तारा भी लग गया है, सब कुछ है पर अंधेरा ही अंधेरा। सिंगाओ जितने तक गुरु की बख्शिश का बटन नहीं दबाया जाएगा साड़िया कमाइया ने की पूरी हो पाती। बाबा जी बचन करते सन सिख अपनी कमाई से मान नहीं करता, अपने पुन्ना से मान नहीं करता, अपने जतप से मान नहीं करता, सिख गुरु की बख्शिश से मान जी मुकदी सदी भी रही। हजूर ने हुक्म किया खजानची 500 रुपया खजाने चो ब्राह्मण न दे। ब्राह्मण 500 रुपया लेके तुर पे कहता जाता है।

मानस कुलारियां मार के सत्संग रूपी मानसरोवर में आप जी ने धन गुरु अमरदास पातशाह जी की बख्शिश प्राप्त की। आज पूर्णमासी की रात बख्शिश वाली रात गंगाराम से कितनी रहम, सोचांगे गंगाराम ने भूल की थी और गंगाराम ने तो एक बार की थी असी रोज कर जाते और दूजे पासे माया जितनी लग जाए गुरु वाल संकोच कर। पर नहीं, माया तो वही साड़ी है जिड़ी चंगे पासे गुरु वाल ने। गुसाई तुलसीदास जी ने लिखे माया है दो भात की, दो चलावे राह एक ले जावे नरक को एक सब। शराबा को बाबा च माया ला दो नरका का बूह खुल जाए, गुरु दे लेखे ला दो गुरु नरक न जोड़ दो। तुसी जिथे तन मन नाल आके जुड़े अपने तन नूं भी पवित्र दर्शन ते शब्द दीते, शब्द गुरु का रूप है। बाबा जी वचन करते सर ना लेके अरदास करने की लोड़ ही बेनती की। बाबा ईश्वर जी महाराज कह लगे ना लेके अरदास तू किसे नु की दे सकता है, ये तो शब्द वाला ही प्यार वाले दे मन प्रेरदा है। मानो शब्द वाला ही सिख दे हिरदे ते बह के आप प्रेरदा, आप शब्द का आदर कराउंदा है। ते बाबा जी कहन लगे फिर बख्शिशी गुरु आप ही कर। तो आप जी ये सुना एक दिन नहीं दो दिन नहीं कुछ दिन तो आप निकले गुस्सा अमृत वेले भी आके जुड़ते हो शब्द। आओ जिस प्रोग्राम नो कदे बना रहे सन बरफरदार सरदार गुरचरण सिंह जी, बीबा हरबंस सरदार करनैल सिंह जी, सरदार हकम सिंह जी और सारे गुरुद्वारे दे प्रबंधक आई साहब कदों आ रहे हो प्रोग्राम बनिया वीक दिन नायक प्रोग्राम सार दास पहुंच गए मार्ग दे दर ते हाजरियां भर रहे हैं और बाकी दो ही दिन विच रहे हैं कल ते परसों। सेवका ने अगले प्रोग्राम ते चला जाना है फिर नदी नाप से इतने साल 50 साल हो गए हैं कीर्तन कर दे पहली बारी इस ताऊ के दर्शन हुए गुरु खां के दर्शन ताकि पीछे हुए अरे संस्थान। तो आओ जो अगला प्रोग्राम है आप जी का नितनेम है अखंड पाठ भी है कीर्तन भी है वो प्रोग्राम जिस तरह आप जी ने बनाया है संगत च अनाउंस कर दो ता जो आने वाले प्रोग्राम जी आप इसे तरह जुड़ के गुरु की खुशियां प्राप्त कर सको। और गुरु अमरदास पातशाह आप जी की महान महान बख्शिश द्वारा आप जी दे दरो करो वरसाए होए गुरु सिख माई पाई पातशाह आप जी की दित्ती हुई दात सफल करते हुए शब्द गुरु का सत्कार करते कीर्तन के पौन अरदास कराते हैं। आप अपने गुरसिखा दिया कमाइया च बरकत पाओ, आप अपने गुरसिखा सिखी जीवन बच्चे बच्चिया चढ़दिया करा।

क्योंकि अमृत वेला है। तो अमृत वेले जाके पहला काम ही ये करना है कि कारी स्नान सिमर करो। स्नान भी हो गया, सिमरन भी कर लिया,

अच्छा आशा जी दीवार लगा के कीर्तन की समाप्ति उस उपरांत अरदास गुरु के हुक्मनामे ए मर्यादा उदास ने बेनती की सी भी आई दी चाह सेवक वालों तो मैं की सेवा कर सकता हाँ तो जो तुसी प्यार दिता है और ये भी गुरु की प्रेरणा से तो उस संसार अज चाह का लंगर तैयार है और मैं तो एवं बेनती की कई प्रेमी कह लगे भाई जी साडा भी हिस्सा विच पा आखो श्री भाई कई प्रेमी ते नाल उन्होंने कहा भी साडा नाम ना ले लो ते असी भी जिना जिना ते गुरु ने मेहर की सेवका नाल हित किया है तो उन्होंने चाह का लंगर तैयार किया है तो हम प्यारी सास संगत सारे प्यार नाल क्योंकि अज आशा दी वार का कीर्तन भी पूरा हो तो मैं चाहूंगा अखीरला छंद अज आशा राग विच आशा राग तो आओ अखीरला ये छंद है अज आशा जी दी वार दे कीर्तन दा भोग पै रहा है सर्व आशा पूर्णी आशा जी दी वार तो ये छंद आपां आशा राग च लगाउंदे

मानस जन्म अमोलक पायो, दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो, दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो, जाते हो कौटी बदला का दूरी को गाहक आयो, लाद्यों का बिरख जबा आयो, लाभ लाभन के ताई आयो।

भी समाप्त की है। आखिरी शिका कह के दास खिमत बैठ होंगे। हरे दुर्गे दुर्गे पहले दुर्गा।

महाराजन से छिन छिन ले लब कहूं बेदरीत कहूं तस विपरीत कहूं त्रिगुण अतीत कहूं सरगुण समेत हो। ते गरीब नु आज सचे पातशाह महाराज दा अज एक होर स्वरूप क्योंकि अकाल पुरख दे कई रूप ने ते उस दे रूप कथन नहीं कीते जा सकते। कतों ते सचेत रूप होके चेतन अवस्था विच तुरिया फिरदा कतों अचेत होके सुता पिया किते भिखारी बन के भीख मंगदा फिरदा ते किते महादानी होके दान करदा फिरदा कहूं महाराजियां नूं दान देंदा फिरदा ते कहूं वड्डे वड्डे छत्रपति महाराजियां कोलों धरती खोह लैंदा किते ओह वेद दा रूप बन जांदा किते ओह तिन्नां गुणां दा रूप बन जांदा किते ओह सर्ब गुणां दा सपन्न वाहिगुरु मालिक होके ते संसार दे अंदर नजर आउंदा है। ओ अकाल पुरख दा रूप अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे स्वरूप जो आप जी पास कल दे पहुंच चुके ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र स्वरूप जेड़े जागदी रूप जागदी जोत है ओ अज श्री गुरु गुरुद्वारा साहिब जी दे अंदर श्री गुरु नानक सतसंग साहिब विखे सुशोभित हैं। उन्हां स्वरूपां नूं आपां सचखंड विखे लैके जाणा जो महाराज साहिब जी दा अतल अस्थान है उत्थे विराजमान कराउणा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सिखां दे गुरु नहीं बल्कि सारे संसार दे सांझे गुरु हन। सारे संसार दी बाणी सारे संसार दा भरम दूर कीता है गुरु ग्रंथ साहिब अंदर सच दे नाल जोड़िया है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने ते सच दी आवाज नूं हमेशा बुलंद कीता है। इस दे विचों केवल सच ही सच लभेगा संसार दे पदार्थ मिले लभणगे बड़िया बड़िया वस्तुआं इस दे विचों लभणगियां साइंस इस दे विच है संसार दी फिलासफी इस दे विच है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर केवल नहीं था ते एक चीज नू नहीं के गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर झूठ नू था नहीं इस दे विच झूठ नहीं है। केवल संसार दी एक वस्तु नहीं गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर ओ झूठ नहीं बाकी सब वस्तुआं संसार दियां लभ लो इस दे विचों पवित्र स्वरूप है जागदी जोत है इस दे विचों जड़ी वस्तु लभोगे क्योंकि रतना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम बड़े बड़े पदार्थ ने लभण दी लोड़ है लब जानगे मिल जानगे वस्तु प्राप्त हो जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ऐसा पावन गुरु है आओ क्योंकि 8 बजे समाप्ति करके उस तों बाद आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन स्वरूपां दी सेवा करनी है ते सेवा करनी है शुद्ध मन नाल ऐसे गुरु को बल बल जाइए रसना दे उपर साडे ए पंक्ति होवे शीश उपर साडे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा पवित्र सवारा होवे ते कहिए महाराज तूं ते मुक्त है सानू मुक्त कर दे असी मैलां दे भरे होए हां पापी जीव हां सानू मुक्त कर सतगुरा तेरा पवित्र स्वरूप जिस दे शीश दे उपर आ जावे उस दे अंदर संसार दियां मैलां रह जान महाराज तू मुक्ति दा दाता है आप मुक्त मोहे तारे मैनू तार लै संसार दे बंधना तो मुक्त कर दे पूर्ण श्रद्धा दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन स्वरूपां दी सेवा करनी है हाथ सुचे करके जोड़े ला के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अगे अरदासा करके भई अज पवित्र गुरु दा संग हो रहा है पूर्ण गुरु दा संग हो रहा है किते महसूस करो किते यार दे दोस्त दे नाल जिंदगी बतीत करनी होवे ना किसे यार दोस्त दे नाल एक पल भी बतीत करन विच आ जाए बड़ा सुकून मिलदा अज गुरु दे नाल वेखिए भी ए सतसंग कीता होया किन्ना सफल हुंदा है किन्ना सुखदायक हुंदा है किन्ना रिलैक्स मिलदा है किन्नी साडी जिंदगी दे अंदर परिवर्तन आउंदा है। आओ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तो बलिहार जांदे होए

साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी की शरण के अंदर रह रहे बड़े पतवंते कवि जिन्होंने साहब गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पावन चरणा अंदर बिने की सतगुरु जिन्या गल्लां आप जी ने कहे हैं जितने वचन महाराज जी वो सब सच हुए ने पर गरीब नवाज सचे पातशाह आप समय नूं जानन हार हो समय दी ठीक समय अनुसार पहचान करन वाले सतगुरु जी आप जी ने कई दफा किया भाई पंथ ते बड़ा बिखड़ा समा आउना है पंथ ते बड़ा बिखड़ा समा आउना है पर पंथ दी अगवाई करन वाला साहिब गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप तो बगैर कौन है। तो गरीब नवाज साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह नूं कवि ने हाथ जोड़ जोड़ के बेनती की थी, साहिब सचे पातशाह महाराज पंथ की राखो ताकि ग्रंथ की मानता रह जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हों अजे गुरता गद्दी नहीं सी बख्शी गरीब नवाज सचे पातशाह जी चरणा च जदों सिखां ने बेनती की महाराज पंथ की इज्जत पत आबरू आप जी ने बचाई है ते पंथ नूं कुछ ऐसे नियम दिओ जिस दे नाल इन्हां दी सारी रहिंदी दुनिया तक इन्हां दी रही जावे। ते साहिब गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने सिखां नूं एक वचन कहा सी श्री आनंदपुर साहिब की धरती दे उपर बैठे हां कि पंथ जिन्ना चिर शब्द ते लड़ लगा रहेगा अकाल पुरख की पूजा विच लगा रहेगा उन्ना चिर एक कुराहे नहीं पै सकता जिन्हें अकाल पुरख की जदों इसने पूजा छड़ दिती ना ये भटक जाएगा कुराहे पै जाएगा। ते गरीब नवाज सचे पातशाह जी दियां ओ गल्लां अते बचन जड़े हैं श्री अबचल नगर हजूर साहब विखे गरीब नवाज सचे पातशाह ने भाई प्रहलाद ते भाई नंद लाल जी की समस्त पेश कीते गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज उस समय का वातावरण जो रहतनामे अंदर लिखिया है गरीब नवाज वर्णन करते हैं।

महाराज कलगीधर पिता ने भाई नंद लाल नूं कहा भाई आ तैनू दसीए भी साडे रूप केड़े केड़े ने केड़े रूप दे तुसी अज तक दर्शन कीते ने ते केड़े दे दर्शन नहीं कीते ते केड़े दे आठ जगाद तुसी दर्शन करने ने।

पहला रूप साडा ए है जिहड़ा तिना गुणा तो परे है, रजो तमो सतो इन्हां तिना गुणों तो परे है। ये जिवें सारी बनस्पति दे अंदर अग है ना, किसे भी दरख्त नूं छांग के वेख लो, भावें ओ अंब दा होवे भावें पिकर दा होवे, भावें दरख्त निम दा है भावें टाली दा है, अग सारयां दे अंदर है, झट ही सारयां नूं अग फड़ लैगी, क्योंकि बनस्पति दे अंदर अग है। ते सारे दुद्धां नूं इकट्ठियां कर लो, भावें ओ घा दा दुद्ध होवे ते भावें मझ दा होवे, गां दा होवे, बकरी दा होवे, किसे दा भी दुद्ध होवे, उस दे अंदर घिओ है। जिवें दुद्ध अंदर घिओ ते बनस्पति दे अंदर अग है, घट घट व्यापरिया परमात्मा वाहिगुरु सचे पातशाह जर्रे जर्रे अंदर जिहड़ा वसदा पिया, एक रूप साडा ओ है जिवें जल किसे घड़े दे अंदर पाया होवे, ते जल जल दा रूप है, जल दे अंदर भी परमात्मा वस रिहा है। पहला रूप साडा तिना गुणा तो परे है, कोई उस गुण नूं जान नहीं सकदा, कोई उस नूं वेख नहीं सकदा, वेखण अंदर ते बड़ा कुछ नजर आ रहा है पर अनुभव दी अख नाल कोई नहीं वेख सकदा, इस करके इस गुण दी पहचान होनी मुश्किल है, क्योंकि इस दे विच कोई रूप नहीं। ए चक्कर चिहन अर बरण जात अर पात नहन, जे रूप रंग अर रेख देख को कह न सकत के। ए लंबा चल, इस रूप नूं अखां नाल वेख सकदे हो, अनुभव नहीं कर सकदे।

जिन्हें साडे बचन सुनने होण, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा शब्द पढ़े, नाल नाल विचार करे ते साडे नाल प्रतख तौर ते उह गल्लां कर रहा होएगा, असीं उस नूं उसे शब्द दे विचों उस दे दिमाग दे अंदर उस शब्द दा जवाब नाल नाल दे जावांगे। जदों प्यार नाल बाणी पढ़ी दी है ना, ते अर्थ अपने आप समझ आउंदे जांदे ने, क्योंकि साहिब सच्चे पातशाह महाराज नालों नाल उस नूं समझाउंदा चला जांदा है। गरीब नूं अज कहिंदे जो मेरे नाल बात करनी चाहे ना, वो प्रेम नाल बाणी पढ़े ते विचार करे गुरु ग्रंथ।

श्री साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे चरणा च मथा टेकिया। पंज पैसे श्री फल गरीब नवाज ने परकर्मा कीतिया ते साहिब सचे पातशाह महाराज आसन ते विराजमान हो गए। वेखद्या वेखद्या सिख बैराग अंदर ने बैराग दा समा बनिया होया है। ए विछोड़ा सहया ना जाए। भाई दया सिंह आए चरण पकड़े साहिब जी दे ते चरण हाथ विच ना आए ते वैराग दे अंदर आंसू गिर पए। महाराज ए कड़ा रूप है। भाई दया सिंह ए जड़ा तू वेखना ए साडा वास्तव स्वरूप नहीं। वास्तव स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर समा गया। इस करके साडे तैनू चरण नजर आ रहे ने, हाथ च नहीं आए तेरे च। गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणी लग। उस तों बाद भाई दया सिंह जी ने उठ के मथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं टेकिया। सारी सिख संगत ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं मथा टेकिया। वेखद्या वेखद्या साहिब जी ज्योति ज्योत समा गए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने ए वाक कहे सन सर्व सिखां दे अंदर, भई सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द मैले। शब्द गुरु मनदिया गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने गुरियाई अपने हथी दिती ते नमस्कार करके ज्योति ज्योत समा गए। उस समय दा वातावरण एहो जिहा सी, सारी सिख संगत दे अंदर वैराग दा शब्द पढ़िया गया।

वही नदी के किनारे थे, दुनिया नु तारन वाला मेरा तन गुरु नानक समाधि लगा के बैठा है।

अमृत में प्राप्त कौन कर दे हम जिन भिम्बर से अमृत धारा मन पीड़े सुन शब्द विचार जिन्होंने भाई शब्द न सुने कन्ना कटोरे बना के निरोल अमृत बाणी का रस पीता है और खुशकिस्मत गुरु नानक के दर से सदा ही अमृत रसता है और पीले भागा वाले किसी महापुरुष ने लिखे है कि जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे उन्होंने झूठे अमल की लोड़ ही नहीं जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे अठे पहर महल में चानन बरन प्रेम दे दीवे फिर एवें नहीं बलदे भाई दीवे बाबा जी बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कलेरा वाले महापुरुष फरमाते सन दीवा जगाने वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी पहला तो दीवा बनाइए फिर उसनू पकाइए ओले वास्ते तेल सरसों नपीड़ के करना पैंदा सरसों कितों उगदी बड़ी मेहनत फिर तेल पै गया अजे भी नहीं जगदा वट की लोड़ वास्ते कितनी मेहनत करनी पैंदी फिर वट भी लगा रखी है हुण जगाइए भाई दीवा ए सोना दीवा जगाई किवें जगेगा प्यार दे नाल दीवा जगे भाई जग गया दीवा फिर लोकी आपे कहेंगे नहीं फलाने घर दीवा जगदे पे आखो सी भाई सारे आखो भाई सरत माई भाई जो मेरे धन गुरु नानक ने दरबार च आके जुड़े हो आओ भागा वाले हो अपनी रसना पवित्र करो सेवक दे कन सफले करो प्यार नाल आखो सतनाम धन्यवाद जो गुरु दे प्यारे जुड़ बैठे हो और गुरु जिसने सानू सबों कुछ दिता है साढ़े वास्ते बारह बारह साल उदासियां धार ली बेबे ने किया सी वीर वे देखना निके निके बच्चे श्री चंद लखमीदार तुसी बाहर चले जाते हो फिर उदास होके मेरे को आ जाते हैं कई दिन बेबे साडा भी कोई बापू है आखो सी हो अगला भी कोई बापू दूजिया के बापू अपने बच्चों मठियाइया लिया के देंगे खिलौने लिया के देंगे तरह तरह की चीजा लिया के देंगे बेबे साडा भी कोई बापू वीर मैं इन्हों छाती ना ला के कहनी हूं पुतो तुहाडा बापू दुनिया का बापू है पर वीर हुण ना जा हुण ना परदेसा नू जा तो प्यारी सात संगत परमकारी दाता जी दोवे बच्चियां नू श्री चंद लक्ष्मीदास गोडिया ते बैठे सानू ठा दिता पुत्र जगत का मिठा मेवा है प्यारे पुत्र पिठ नाल आके लग जावे माता पिता की छाती ठर जाती है पर मेरे दाते ने अपने पुत्रों नू उठा के ते बेबे वाल मुखातब होके कहा सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले सुन के गल ए पीरा दे पीर बोले रब आप ही पाल सी सारिया नू जद के रब दे नाल सब दुखी दिसन करा की मैं दुआ दिला रहा बेबे मेरे ननकार रब बनाया संसार दुनिया दुखी है काम क्रोलो मोहंकार दी अपनी साड़ी है बेबे मेनू जान दे ना बिठा इतने संसार रोगी हो चुका है ए संसार रोगी नाम दारू नाम दा दारू दिता उस दाते ने जिस दाल गुरुपुरब मना रहे हो यही दात होती है आए कर प्यार नाल पढ़ो पहला सेहत बोले तो पीछे सारी सही संगत गज के अपनी अपनी हाजरियां लगवा लो बाबा जी बचन करते सन जरा संगत जाके रौला पाता है वो इतों कुछ नहीं ले जाता जरा चुप करके बैठा रहा शब्द की धारणा नहीं करता
بابا جی کہندے سن او گرو کی دگاہ کا چور ہے تے جڑا گج کے بولدا ہے تے گرو نانک دے در تے دی حاضری لگ جاندی ہے گرو نانک حاضر ناظر تے آو لگاؤ حاضریاں ساڈا گرپرب منایا سفلا ہو جائے پیاری ساتھ تے پہلا سیر بولے پیچھے ساری سنگت

जिस जीव आत्मा दे जीवन विच प्रभात आ गई उसने राह पा लिया, द्वेष खत्म हो गई, आत्मा परमात्मा दी एकमिकता हो गई, उसके गल विच जित दी माला पवेगी। गुरु तेग बहादुर जी दे उचारण कीते राग जैजावंती दे चार शब्द अखीर विच आए हन। जैजावंती नूं किसे भी संगीत ग्रंथ राग किसे राग दी बंस विच ना लिखना दर्शाउंदा है कि नवेकला राग है। अते गुरु महाराज जी ने जैजावंती नूं अखीर विच रख के नवेकली गल ही कीती है। गुरु साहबान ने राग नूं नवी नुहार, नवा मोड़ ते नवा गायन रूप दे के नवा वड्डा पसारा पा के आत्मिक ठंड प्राप्त करन दा हथियार बनाया। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दो गंधार, दो निषाद अते बाकी सारे शुद्ध सुर लगते हैं। जैजावंती विच कोमल गंधार की वरतों एक विशेष ढंग नाल उसके दोवें पासे ऋषभ सुर रख के की जाती है। इसका वादी सुर ऋषभ अते समाधि पंचम है ते गौण का समा रात का दूजा पहर मनिया है। सरवण करो रे मन कौन गत हुए है तेरी, भाई कमरपाल सिंह जी पासों। दूजे शब्द गायन कर रहे हैं डॉक्टर दर्शन सिंह जी नरूला। शब्द बोल हैं राम सिमर राम सिमर, यह है तेरा काज है। पहला शब्द रे मन कौन गत हुए है तेरी।

गुण का वचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं देवे, भाई न साथे जाले, खमाल अंगी नेतन आसरी, शब्द सर्वन करो तिन ताल देवी।

परम पिता अकाल पुरख महाराज दी बड़ी मेहर होई के डुबदे होए संसार दे उपर कृपा कीती। सतगुरु ने सब तो पहला अवतार धार के सतगुरु ते संसार ते कृपा कीती। सतगुरु ने सब तो वड्डी कृपा ए कीती बई संसार अंदर अवतरे प्रगट हो गए। अवतार लेना संसार दे लोगां वास्ते शायद कोई वड्डी गल नहीं सी, क्योंकि समय समय अनुसार

0: पवन पानी में संतर चल सूरज उतार सभी धरती माल तन मन मन संतार
1: वाइन चले तन चंपूर पैर लान फिर सिर उठो रामा छठे पाए वेखे रोक से कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पिछड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपाव निरंकार सच नाम जाका किया सर जहान सेवक सेवक करम चढ़ाओ तिन्ही रहन जिना मचाओ सिखी सिखिया गुर विचार नगर करी नगरी करम लगाए पार बोलो चखा चकी चक थल मरोले बहुत अनंत लाटू मात आनिया का पंखी पौंगिया लेना साथ सुए चढ़ को आइए जंत नानक पौंगिया करतना अंत
2: अंदर मन को है सुए पैकेत नचे सब हुए नच नच असे चले सिरोट न जाए सुधन हो